आओ जानन पिता लोक सत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उड़े उड़े आवे सह कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल साध बल जाई।

साधु। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर आगम आयागम अपारा सब त्याव हैं, सब त्याव हैं तुध जी।

सब तेरी तू सब नित्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तू दिया बिछोड़ा आप मिलाया।

नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पय प्राप्त मानक देहुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया पावर काज तेरा कित न काम।

हमरे दुष्ट सब तुम का भुआ पात मोहे बचाओ सुखी बस मोरो परिवार सेवक सिख सब करता रहा मोर अच्छा निष्कर करे सब को संघरे पूर्ण हो हमारी आसा तोर भजन के रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चाऊ से तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप आद मुझे उभरिया मरण काल का त्रास निवरिया वो जो सदा हमारे पछा श्रेस्त जो करो रचा राख लियो मुई राखन हारे साहिब संसाई प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्म जुतियो जवन काल सब लोक सवार नमस्कार ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव ध्यान जश्न उपजायो आद्यां ते कह अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सग प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर के जानत भले बुरे के पीर पछानत चेटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक पीर पछाणे कट कट के पट पट की जाने जावे उद करक करा कर तारा प्रजा धरत तब दे पारा जब या करक कर तो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन सृष्ट सब धारा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ईते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब याद अनिल अनाद संभ ताका मूढ़ विचारत पेता जाको भेव न पापत भेदा ताको कर पान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कहो कहत सदा शिव निरंकार का चिंत न भेव आप अपनी बुद चेती वर्णत भिन्न भिन्न तुं थेती तुमरा लखाना जाय पसारा के वि सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुरूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत सकीनी उत्पुष खान बहु रस दीनी कहु पुल राजा वह बैठा कहु सिमट पै शंकर कटा शिगृ श्रेष्ठ काय चंप आ चुका सुरु स्वयं भव अव रक्षा मेरे तुम करो सिख्यो बार या सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश कर

रन कहता जय आज तुझ तप सरणी परे तिनके दुष्ट दुख भय मरे पुरख जगन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट न तत्काला कृपा दृष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छ्वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास से ताई उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ लियो उबारी सर्व टोर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लियो बचाई कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल विक सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छा करता सूर्य अस्त जप दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मान बाचत पल पव सुई दुख नत सब व्याप्त कोई अरिल सुनय गंग जो जाय सुरस न पावई सुनय मूर्छत लय चतरता आवई दुख दर्द पाओ निट न तिन्नर के रह हो जो या कि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 17 सहज पनी जाय अर्थ सहज पन तीन की जाय पाद्रव सुदे अस्मी रव वारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चित्रोपके अनुत्रया चित्रे मंत्री पूप संवादे 405 चित्र समाप्त मस्त स्व मस्त अपसू दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं ना गणेश प्रथम बनाऊ किसन विष्णु कबू न त्याऊ कांस ने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पगिन सो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किं कर थारो अपना जान करो रखवार बाएंगे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतपरिया है चुन चुन सतरा मारे मरिया देख देख जग में दो चल राख आप और न तल्ला तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साई में दास तिहारा जान अपना मजा निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आप आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं अंत वार तो ही अपना जान करो प्रतपारा तुम साई में किंग करतारा दास जान दा आतो बारो हमरे सब बैरिंग संगारो प्रथम तरु भगवत को ध्यान बाल करो कथा बित कविता बित नाना कृष्ण जता मत त्रितरु चारु जो कोई कब लियो विचारु कवियो वास्तुरा जो निज प्रभ मो सो का हो जग माहे जो तै प्रभ को त्याए है अंत सुर्ग को जाहि दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपजत रंग च्यों जले बिकै समाई दोहरा जब आयस प्रभ को भायो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबू कैत सुनाए कब वाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत पंत लहेंगे मुक्त पल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की दे मोह कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करो जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाकत नेत स्वर्ग वास रघुवर करा सगरे पुरी समे चौपाई जो ए कथा सुनै और गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्ण भक्त की ये पल होई आद ब्याद छय सके न कोई समस 17 सहज 55 हाड़ विधि प्रथम सुख दावन तवै प्रसाद कर करन सुधारा फूल परी लहुले सुधारा दुहरा नेत्र तुमके चरण तर स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध्या सा जानो नहीं बाद स्वाद विवाद
ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सोया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आक्तरे नियानियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक मते कन मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर न कहो सब तो

नमो चरणारविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिना जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार एकंकारा सतगुरु

0: सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी पाए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी तुम मेहरबान दास हम दीना
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: नानक साहिब भरपूर लीना।

सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता प्रसाबल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मा परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्रा न सत्रा न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साकु शरीक अमित अमीक सदैव प्रभ अजय है अजा है। भगवती छंद प्रसाद के जाहर जोहर के हाजिर हजूर हमेशर सलामे समस्त लुकलामे के साब दिमागे के हुसनों चरागे के कामल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी देहंद है के राज कर हिंद है करीमल कमाले कुशल जमाले गरीमल खराजे गरीबल नवाजे है आई फल सकान है हरासल बेकान है कलंकंक प्रणास है समस्तल निभासे है गंजल गनीम है रजाय कर रहीम है समस्तल जुबाहे के साहिब करा है के नरकुं प्रणास है बहतल निभासे है के सर्वल गवान है हमेश्वर रवान है तमाम तजी में समस्तल अजीज है पारंग परमीस है समस्तल अदीस है अदेशल अलेख है अमेशल अपेख है जिमिनल जमाह है अमीकल माह है करिमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचन प्रकाश है के मित्तव सबास है के आजब स्वरूप है के मित्तव विभूत है के मित्तव पसा है के आत्म प्रभ है के अचन अनंग है के मित्तव भंग है मद भार छंद प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गण मदाम अरबर गंज हर नर पर भांजे आन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खण बर नर अमंड अनपव नास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंशज अंगासन उपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल मंड दिस विस पांड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपव नास

नाम अनच जगात अर जजना बात अनच जगात अनंद बात अन टोट भंडार अन टट अपार आडीठ धर्म अतिठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त प्रसाद करणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धर्म है जाके कारण है मन माने है जग जान है सर्व पर है सर्व कर है सर्व पास है सर्वनाश है करना कर है बेसो पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करना कर है अजपा जप है अथप थप है अकृता कृता अमृता अमृत है अमृता अमृता करुणा कृता है कृता कृता तरणी तृत है अमतेश्वर।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सह पहंगुर प्रसाद या समहला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडा सराज की तुहनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार

तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ते हवन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजै देना कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खच लाया था उतना भी काई कार जल थजियां पुरियां लोआ या कारा या कार ओ जे अखस तू हां।

अंडज जेरज उद्भुजा खानी सेत जा सुमित जने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते उपाय के समाले सबना जन करता।

कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़

खोड के मल त्रतन कर हछा तो सत पर जानी जा सच तेरे प्यार न सुन रहस्य था पाए मुख द्वार सत पर जानी जा जुक्त जा।

ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित एक मधु जसन जे तरे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जदि सदावे जुगत न

हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे नंद कणा।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठो नंदन प्रथम राग भैरों बै करे पंच राग ने संग उचरहे